0: गिलास तुम कुफा भी
1: दिया मानना नहीं अंडरकिन आरा इकोलॉजी के फलों ने मानने अंडरकिन आरे इकोनॉमिक फारु जानुए मानो फेरुवना जान जो केटी ने दे चारी आरुवना फुट निजू फा आताकुज़ याजा उन रो सही लांजा इकोनॉमिक सही आफाना मापनरुस न्यूल्ला मंदित ना फालंजा फापुआरे आफाना यंचुमा मेचा के फावे निफिशी ना फालंजा फापुआरे दे चफानेरीना न्यूल्ला यारु फा फानापीना न्यूल आमनी फिल्टेनन्या अंदावनांफ

0: क्लास तुम कुफा भी
1: निफितुंडाना फिरने इंसान या मिला फियुमानन मिला आद मिला फिर ऐसान अरसाइम मतुंगा नियंतु को मामुना फुलंतानुरा मैं अपिफनंतानुरा इतुंडा फिरने ना रपिच रवका पिच आओ के नरो चिफोफी तक आओ के नरो चलालोव नुल फमिला मियुमने नारे मिला मियुफने नारे Arlina Nina Mila Saye Narewa, what a first in Natona Rotewa, Manuman Tifin and MP. Saye Narewa Mandayan Rekt, Mitru and Narewa Fanesan and Rekt, Azamet Saras Renul, Nam de Sakafi Vavan, Nam de Sakafi Avin, Nam Resaka, and took Politica Marsamiafa, Faye Narewa to Pondrapits on Madagascar.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.